0: चल के रहा
1: क्या पड़े
0: चल के
1: का?
0: चल गया
1: का?
0: आ, चल के
2: beda masa satu rasa sukun spesial baru.

0: चल गए रहा
1: क्या पड़े
0: चल गए चल गए चल गए
2: Beda masa, satu rasa, sukun spesial baru.